0: लो पैसे।
1: क्या कर रही है थर्पी? आ गया
0: बावलट।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारूपी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल चल।